एक हाथा नवाजन टाली नचाले गाड़ी एक हाथा खानी मग ये सन्ना गोरी चल पीरा लजा आता ये

0: बरं कसला थरथराट हो डॉन आणि उडी उठा अडागान.
1: डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं.

खामोश। जले को आग कहते हैं, बुझे को राग कहते हैं, जिस राग से बारूद बनती है उसी को लक्ष्मीकांत कहते हैं।

अरे टकले की खोपड़ी टूटने की आवाज सुनी तुम लोगों ने? अरे अभी तो लक्ष्य का एक हाथ गया रे, लक्ष्य का दोनों हाथ दोनों पैर भी गया ना, लक्ष्य किसी के सामने झुकेगा नहीं, क्या समझे नहीं समझे।

0: अगनाई गाँव में फुटला अग गाँव में फुटला अंगा लाया सुटला एक थरथराट गाँव में फुटला अंगा लाया सुटला एक थरथराट
1: रो मत गंगू ये तो दुनिया की रीत है। अरे ये दुनिया वाले न तो खुद चैन से जीते हैं न दूसरों को चैन से जीने देते हैं। आई हेट टीयर्स गंगू इन आंसुओं को पोछ दो ये बहुत कीमती है रे।

लोटांगन खुद पुड़े घाल तो बैठका शेकड़ा कर तो हे नाक अता रगड़ तो तुझा नवा सजप अता

राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल।

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।

गरुड़ प्रताप पुरंदर सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज अश्वपति गजपति भूपति गो ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति श्री श्री श्री शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। आपण ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM आणि मी आहे आपला मित्र आर जे संजय।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

परम सदैव पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। धर्म सभा के गौरवात्मक स्थान पर विराजमान गुरुदेव के इस पावन भूमि के क्षेत्रपाल महाराष्ट्र प्रवर्तक सिद्ध के चरणों में स्नेही संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, उत्साह उल्लास और उमंग के साथ

والسهرة والناس ومنقي और श्रद्धा के साथ उपस्थित श्रद्धालु श्रोतागण, आज दो संदर्भ पर बात करनी है।

पहला संदर्भ है जिसके बिना जीवन शुरू नहीं होता। आयुष्य शुरू होता है सांस लेने से, और सांस लेने के लिए या तो जन्मा हुआ बच्चा रोता है या परिवार वाले उसके रुलाते हैं। आज जिंदगी की सांस लेने के लिए ही रोना मजबूरी हो वो जिंदगी की बात कोई करनी नहीं। लेकिन एक जिंदगी है जो तभी शुरू होती है जब मन में गुरु की आस जन्मती है और गुरु के आशीष मिलते हैं। वे मंजिल पर पहुंच गए जिनको गुरु की प्यास जन्मी, उनकी प्यास ही साधना हो गई जिनको गुरु के आशीर्वाद ग्रहण करने की कला आ गई। जिसकी कोई संभावना नहीं थी वो चंडकोशिक भी मंजिल पर पहुंच गया जब उसको तीर्थंकर महावीर के आशीर्वाद मिल गए। छह पुरुष और एक नारी की हत्या निरंतर करने वाला अर्जुन माने भी नमो सिद्धानम का अधिकारी बन गया जब उसने जग गुरु लोक गुरु त्रिलोक गुरु तीर्थंकर महावीर की शरण को स्वीकार किया। इस सत्य को स्वीकार करिए कि मैं और आप यदि मंजिल पर नहीं पहुंच पाए इसके पहले तो उसका कारण यह नहीं कि आपके जन्म पत्र में योग नहीं था, उसका कारण यह नहीं कि मेरे पिछले जन्म के पाप बहुत थे, उसका कारण यह नहीं कि मैं बदनसीब या दुर्भागी हूं। मैं गारंटी से आपको बिना पूछे कह सकता हूं कि आप में से किसी ने भी रोज छह पुरुष और एक नारी की हत्या करने का विचार कभी किया ही नहीं है। करने की बात तो दूर। तो अर्जुन माली के पास जितना पाप था उसकी तुलना में तुम्हारे और मेरे पास पाप कौन सा ज्यादा है? अर्जुन माली ने कितने लोगों को मारा इसका तो फिर भी काउंटिंग है, चंड कौशिक ने कितने जीवों को मारा इसकी तो कोई काउंटिंग भी नहीं है। चंडकोशी के तुलना में प्रवीण ऋषि का गुस्सा तुम्हारा गुस्सा तो कोई मायने ही नहीं रखता है। इसके बावजूद वो मंजिल पर पहुंचता है तो उसका कारण ये नहीं कि उसका सौभाग्य था, उसका भाग्य था, उसका एक नियम कारण है इसको गुरु की कृपा मिल गई। जिसको गुरु की कृपा नहीं मिली और बाकी सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, वो दुर्योधन तड़पते तड़पते मर गया। जो उसने चाहा उसके बाप ने किया, जो उसने चाहा उसके दादा ने किया, जो उसने चाहा उसके माँ ने किया, जो उसने चाहा उसके मामा ने किया,
जो उसने चाहा उसके भाइयों ने किया, जो उसने चाहा उसके दोस्तों ने किया, जो उसने चाहा उसके गुरु द्रोणाचार्य ने किया। लेकिन फिर भी न स्वयं को बचा सका, न अपने भाइयों को बचा सका, न अपने गुरु को बचा सका, क्योंकि गुरु कृपा की कभी प्यास उसमें जन्मी नहीं। अर्जुन में वो प्यास थी, अर्जुन ने सेना को नहीं चुना, निहत्ते श्री कृष्ण को चुना। डिक्लेयर था श्री कृष्ण का कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ पूरे शस्त्र अस्त्र से संपन्न सेना है और एक तरफ निहत्ता श्री कृष्ण है। और ये हौसला जिसमें होता है सेना को छोड़कर के निहत्ते श्री कृष्ण को चुनने का, जीत उसी की होती है। आज का दिन है जिंदगी के सारे निर्णय को बदलने का, सारी अपने अंदर की याचनाओं के कैरेक्टर को चेंज करने का। आज रोम रोम से एक ही तमन्ना जन्मे है कि मुझे बस गुरु चरण चाहिए।

ये तमन्ना, ये आस, ये प्यास दिमाग से नहीं हो, शब्दों से ना हो, दिल से हो। और मैं पूरे धर्म संघ की ओर से, पूरे धर्म संघ की ओर से मतलब जैन धर्म संघ की ओर से नहीं, दुनिया के सारे धर्म व्यवस्थाओं की ओर से, इस्लाम, क्रिश्चियन, बुद्ध, शैव, वैष्णव, वैदिक, जैन, सैकड़ों धर्मों की ओर से, उनकी साक्षी से आपको एक ही बात कह सकता हूं कि जिसको गुरु की प्यास लगती है उसको गुरु अमृत का सागर बनकर के मिलते ही मिलते हैं।

कोई देवी तुम्हारी प्रार्थना सुनेगी या नहीं सुनेगी मुझे पता नहीं, कोई देवता तुम्हारी तमन्ना पूरी करेगा या नहीं करेगा मुझे पता नहीं, कोई भगवान तुम्हारी सुनेगा या नहीं सुनेगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की पता है, गुरु कभी किसी की पुकार को अनसुना नहीं करता है। ये शाश्वत सत्य है, ये किसी परंपरा का सत्य नहीं, किसी मान्यता का सत्य नहीं, ये किसी समाज का सत्य नहीं, किसी देश का सत्य नहीं, ये शाश्वत सत्य है। जब तक गुरु नहीं मिलते वाक्य को चेंज

के उस गुरु की आराधना करने का दिन है। आज का दिन मेरे बिना चाहे, मेरे बिना बुलाए, जिन्होंने निरंतर मेरे पर कृपा बरसाई, उनके प्रति समर्पण करने का दिन है। मां रोने के बाद दूध पिलाती है, दुनिया के सारे देवी देवता तुम्हारे माथा रगड़ने के बाद तुम्हारी डिमांड पूरी करने का आश्वासन देते हैं, पूरी करते नहीं करते मुझे पता नहीं। दुनिया में केवल एक ही तत्व है, गुरु तत्व, जो तुम्हें रोने के पहले संभालता है। वो ठोकर खाने के पहले संभालता है, वो चोट लगने के पहले सहज लेता है, वो ट्रीटमेंट नहीं करता, वो बीमार ही नहीं पड़ने देता है। और ये हमारी नादानी है कि हम ट्रीटमेंट करने वाले को धन्यवाद देते हैं और जो बीमार नहीं पड़ने देता उसको याद नहीं करते। लेट मी रिपीट, ये हमारी नादानी है कि हम ट्रीटमेंट करने वाले को धन्यवाद देते हैं और जो हमें बीमार ही नहीं पड़ने देते उनको हम भूल जाते हैं। ये दीन है आज का कि जिन्होंने मुझे बीमार नहीं पड़ने दिया, भटकने नहीं दिया, रोने नहीं दिया, उनके उपकारों को महसूस करने का। इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और ये भारतीय संस्कृति है कि पहली पूर्णिमा गुरु को ही समर्पित करिए और दूसरी पूर्णिमा भाई बहन को समर्पित करिए। आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु को है, श्रावणी पूर्णिमा भाई बहन को है। तो आओ सीधे बैठे, आंखें बंद करें, महसूस करें स्वयं को।

देखे हुए आंखें बंद आंखों से उन आंखों को देखें, जो कृपा से लबालब भरी हुई है। जो बरसी है, बरस रही है और बरसती रहती है हम पर।

महसूस करते हुए झुकते चले जाएं, झुकते चले जाएं, झुकते चले जाएं, तब तक झुकते चले जाएं जब तक मस्तक जमीन को नहीं लगता है। झुकते चले जाएं, झुकते चले जाएं कि जब तक गुरु चरण का स्पर्श आपके मस्तक को नहीं होता है। झुकते चले जाएं, झुके रहे, झुके रहे, झुके रहे। और महसूस करें कि आपके सिर पर गुरुदेव का हाथ है, वो कोमल कृपा बरसाता हुआ है। आपके अंदर के सारे पाप को साफ करता हुआ है। और बहुत गहराई से बोले,

मेरे पीछे दोहराएंगे, जम किंची मिच्छाए मन दुकड़ाए वे दुकड़ाए काए दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोहाए सव कालियाए सो मिच्छो व्याराए जो में अवराहा कया जो में अवराहा कया तस्स में खमंतु गुरुदेव खमंतु गुरुदेव खमंतु गुरुदेव। मैंने क्रोध से अहंकार से कपट से लोभ से जो जो आपका अभिनय मन वचन काया से किया है

जाना नहीं, तुम्हें ही जाना। मैं नहीं जानता, आप जानते हो। उन सबके लिए क्षमा क्षमा क्षमा। की प्रार्थना गुरु आपके चरणों में।

गुरु कृपा। आप ही मेरे जिंदगी के दीपक हो, आपसे ही मेरे जिंदगी में उजाला है। तुम्हारे बिना जीवन अंधियारा है। तुम ही मेरे प्राण हो, तुम नहीं मैं नहीं।

गहरा सांस लें, हाथों को रब करें, धीमे से आंख खोलते हुए चेहरे पर हाथ।

आज आषाढ़ी चौमासी पक्की, जिसकी चर्चा हम पिछले दो दिनों से करते आ रहे हैं, ये दिन है एक निर्णय करने का, इसको समझने का। गुरुदेव के ही शब्दों में, चोर रोज नहीं आता, चोर रोज नहीं आता, लेकिन दरवाजे को ताला लगाए बिना हम कभी नहीं सोते हैं। कौन कौन है आप में जो जिस दिन चोर आएगा उस दिन ताला लगाएगा? हेलो, कोई है नगर में, धर्म सभा में?

गुरुदेव फरमाते थे चोर का आना निश्चित नहीं है, कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है। 365 दिन में कभी एकांत पर आया तो आया, लेकिन पाप तो कंफर्म है, वो तो आएगा ही आएगा। वो नहीं आएगा इसकी किसी को गारंटी नहीं है, उसके आने की गारंटी पक्की है। जिसके आने की गारंटी पक्की है उसके लिए दरवाजा बंद करना, उसको कहते हैं आषाढ़ी चौमासी पक्की। एक कैमरामैन, वो कैमरामैन बसंत जाता तो भी आएक थोड़ा सा बसंत समझता से आएक। पचक खाने न मनते जीवे किम जनाई, कमिटमेंट करने के कारण से क्या होता है, एग्रीमेंट करने के कारण से क्या होता है, डील हो जाती है। और अपने जिंदगी के साथ कमिटमेंट करना है, अपने जिंदगी के साथ एग्रीमेंट करना है, अपने भविष्य का एग्रीमेंट करना, अपने भविष्य की कमिटमेंट करना, इसको पचकान कहते हैं। पचकान का इतना ही मीनिंग है, मेरे फ्यूचर का एग्रीमेंट, मेरे भविष्य का निर्णय कि मेरे जिंदगी का दरवाजा किसके लिए खुला रहेगा, किसके लिए खुला नहीं रहेगा, कौन सा दरवाजा खुला रहेगा, कौन सा दरवाजा खुला नहीं रहेगा, ये तय करना, इसको पचकाने कहते हैं, इसको संवर कहते हैं, इसको सुरक्षा कहते हैं, इसको सेफ्टी जोन कहते हैं, इसको वैक्सीन कहते हैं। और इस वैक्सीन की ही कमाल है कि दुनिया से पोलियो गायब हो गया। इस वैक्सीन की ही कमाल है कि चेचक की बीमारी दुनिया से गायब हो गई। लेकिन उस तीर्थंकर परमात्मा के तरफ देखो एक बार, जिन्होंने ऐसी वैक्सीन दी कि पाप का वायरस का अटैक हो भी जाए तो भी पाप का बुखार ना आए। ये पाप की वैक्सीन को पचकान कहते हैं। और उसको लेने का दिन उसको आषाढ़ी चौमासी कहते हैं। एक निर्णय करना है 4 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? मैंने ऐसा सुना है कि समर्पण चतुर्मास समिति में 4 महीने। चतुर्मास समिति क्या है? समर्पण जीवन समिति नहीं है, समर्पण चतुर्मास समिति। और उन्होंने तो पहले दिन से तय किया जिस दिन 4 महीने पूरे हो जाएंगे विदाई समारोह पक्का करेंगे। बराबर है ना? आज तक का इतिहास तुम्हारा वही है ना? जिस भी संत को तुमने लाया उसको 4 महीने की चौमासी पक्की होने के बाद

वही मेरे साथ होना है। तो 4 महीने की बात है, कितने महीने की? 4 महीने की। 4 महीने की वैक्सीन लगानी है। और आज यहां बैठे बैठे आपने तय करना है कि मैं 4 महीने में क्या नहीं करूंगा, क्या नहीं कराऊंगा और किसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। 3 वाक्य फिर दोहरा रहा हूं, क्या नहीं करूंगा, क्या नहीं कराऊंगा और किसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। गुस्सा में करूंगा नहीं इनफ नहीं है, गुस्सा में कराऊंगा नहीं ये बहुत जरूरी है। कई सयाने लोग गुस्सा करते नहीं है, कई सयाने लोग गुस्सा करते नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ करते हैं कि सामने वाले को गुस्सा करना ही पड़ता है। हेलो, थाने अनुभव है कि नहीं लो? वो गुस्सा नहीं करे लेकिन अपना ने गुस्सा कराए बिना रेवे ना। सारी माताओं को यह अनुभव है ना बच्चों का, बच्चे गुस्सा नहीं करते, बच्चे गुस्सा नहीं करते लेकिन ऐसा कुछ करते हैं कि मम्मी को गुस्सा बोलो ना, करना पड़े ना। हेलो, तो बोलता जाओ ना, ठाकुर भी नंबर है। ये गुस्सा नहीं करे पर ईसु कोई करे कि थाने गुस्सा आधे किस्सा बोलिए ना। तो गुस्सा करना नहीं पर्याप्त नहीं है, गुस्सा करवाना भी नहीं और गुस्से को सपोर्ट नहीं करना। कई लोग गुस्सा करते भी नहीं है, गुस्सा कराते भी नहीं है लेकिन गुस्से को सपोर्ट करते हैं। यस और नो? हाँ, कटे थोड़ा गुस्सा रो नाटक चल रही हो शीला, लाइव सीन चल रही हो शीला, लाइव गुस्सा चल रही हो शीला, उठे देखने खड़ा रहे हो कि निकल जाओ। हेलो, खड़ा रहे हो किरण लिए वो सपोर्ट करने के लिए, स्टेडियम में जाते किसके लिए? खेलने वाले को सपोर्ट करने के लिए। यहां किस लिए आए? प्रवीण ऋषि को सपोर्ट करने के लिए। इसलिए सारे सपोर्टर को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, इतना सपोर्ट मिल गया तो है ना, 4 महीने तो पार, बीजेपी 400 पार गई कि नहीं गई लेकिन इतना सपोर्ट मिल गया तो प्रवीण ऋषि तो के तो 4 महीने पार। अरे भूलो ना, हो गए कि हो जाएंगे? हाँ, देख लेना, थोड़ा आपको डाउट है तो क्लियर कर लेना। तो इतना सपोर्ट आपने दिया तो उसके लिए तो धन्यवाद तो देना ही चाहिए। तो तय करना है कि मैं गुस्सा करूंगा नहीं, गुस्सा कराऊंगा नहीं, गुस्सा करने वाले को सपोर्ट नहीं करना। सपोर्ट नहीं करने का मीनिंग क्या होता है? कोई गुस्सा कर रहा है ना, वहां खड़ा ही नहीं रहना। क्या उठे खड़ो से नहीं होगा? जो घर में करो कि पंडाल में करो कि कठे भी करो, कोई भी करो, जटे गुस्सा शुरू हुई हो उन्हें अटेंड करनो से नहीं। अच्छी कला है ना। और यदि आपने गुस्से को अटेंड नहीं किया कि सामने वाले का गुस्सा, हेलो, गुस्सा क्यों करे सामने वालों? अनुरो गुस्सा लंबो क्यों चाले? अपन अटेंड करा। मैं बखान शुरू क्यों करियो और बखान कंटिन्यू क्यों करियो? हेलो, थे बखान ने अटेंड कर रहे हैं,
हे जर बखान शुरू करण का साथे उठ रही जाओता तो मैं बखान कर सकता हूं कहीं? बोलो ना, मैं बखान क्यों कर रही हूं? क्या अटेंड कर रही हूं? सामने वाला गुस्सा क्यों करे? अपन अटेंड करें, थे अटेंड मत करो। यदि आपने अटेंड नहीं किया, भगवान महावीर ने क्या किया आपको पता है क्या? चंडकोशी के गुस्से को अटेंड नहीं किया। चंडकोशी गुस्सा करता गया, भगवान ने उसको रिसीव दिया नहीं, रिस्पॉन्स दिया नहीं, रिप्लाई दिया नहीं। रिसीव नहीं करना, रिस्पॉन्स नहीं देना, रिप्लाई नहीं देना, रिएक्शन नहीं देनी, मैंने गुस्सा ने सपोर्ट मिले को नहीं, और सपोर्ट नहीं मिलो तो किसी की भी सत्ता रहती नहीं है। सत्ता कब रहती है? जब सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट नहीं मिला तो सत्ता रहेगी नहीं। आप गुस्से को सपोर्ट करते हो इसलिए गुस्सा रहता है। क्या लगता है आपको, मैं खुरा बोल रही खोटो बोल रही हूं? बोलो ना, खरो है ना? तो गुस्सा ने सपोर्ट तय कर ले जाए। मैं 4 महीने रात्रि भोजन करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, करने वाले को सपोर्ट

कॉफी पीने के लिए सुपर जाऊंगा नहीं, हम मैंने नगर आवन का पीने को रिपोर्ट है मारा कने कि नगर वाला फक्त कॉफी पीवाने सुपा जावे उरी सेल्फी निकालने वायरल करे म्हणजे जका नहीं जा रहा है वैने उचकावे मैं 4 महीने गौतम प्रसादी और घर की प्रसादी के अलावा बाहर का अपने पेट में कुछ नहीं डालूंगा, ये तय कर लो। हेलो, मैंने कल बड़े महाराज साहब से एक बात करी थी, मैंने कहा ये सारे होटल बंद हो जाए ना तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। क्या लगता है आपको ये हॉस्पिटल को पावर कहां से मिलती है? होटल से मिलती है। और मुझे और एक जानकारी मिली, अब क्लाउड रेस्टोरेंट खुल गए। कौन से रेस्टोरेंट? हेलो, मालूम है तुम? क्लाउड किचन। देखो मेरे से पहले उसको जानकारी, मुझे नहीं दी उसने। देखो कैसा है, मेरे पास कल जानकारी के आया है, मैंने आज बोला, उसके पास पहले से छिपा के रखता। अच्छा है क्या? नहीं तो अब क्या करना? बस इतना सा तय कर लीजिए कि 4 महीने में घर का और गौतम प्रसाद के अलावा मेरे पेट में बाहर का कुछ नहीं डालूंगा। ये सुन लो, हाँ तुमने तो पचकन दिया राज, डिक्लेयर कर देता हूं, अनिल वो पोखरना को पचकन दिए है, दूसरे पचकन दिए 2-3 दिन पहले जाकर के राजेंद्र चोपड़ा को, बेकरी प्रोडक्शन खाना नहीं, स्पाइसी खाना नहीं, बाजार की मिठाई खानी नहीं, और सूर्यास्त के बाद फूड खाना नहीं। उसके रसोइयों को भी पचकान दे करके आए, इसको खिलाना नहीं। अब ठीक बोला कि मार सा बुरा घरे जाने पचकान दिया, मारा घरे जाने पचकान दो तो मेलू ना तुम्हारे तो कल्याण हो जाए ना। उन्हें घरे पचकान दिया, थाने गुरु के घर में पचकान दे रहा हूं। कौन सा घर अच्छा है? कौन सा घर अच्छा है? अपना घर अच्छा कि गुरु का घर अच्छा? तो गुरु के घर पर पचकान लो। 4 महीने में नो बेकरी प्रोडक्शन, नो बीकानेरी भुजिया, नो कल्याणी भेड़,

0: कठहल की पानी पूरी, पानी पूरी की पचकान नहीं देता वो, इनसे बनाना और खाना, बाजार की पानी पूरी नहीं खाना। देखो मेरे पास बहुत कुछ जानकारी है, मैं बोलता नहीं हूं, यदि जानकारी दी ना मैंने आपको, तुम तो पानी पूरी सपने में नहीं खाओगे बाजार की। बस छोटी सी जानकारी देता हूं कि मेरा टाइम हो गया है, ये जितने भी ठेले चलाने वाले हैं उसमें कुछ जैन लोग भी रहते हैं, उनसे मेरी बात हुई, इंदौर में हुई, पुणे में हुई, उनको मैंने सहज पूछा, जितना माल बनता है उतना सारा बिक जाता है क्या? ते ही बोले मार साहब बच जाता है। मैंने कहा बचे हुआ क्या करते हैं? बोले मार साहब रस्ते में कचरा कुंडी देख करके डाल के आ जाते हैं। मैंने पूछा मेरे समान बताता हूं, मैंने कहा घर क्यों नहीं लाते, आप क्यों नहीं खाते घर ला करके? बोले मां साहब खाई नहीं सका। क्यों खाई नहीं सका? खिलाओ थे। बोले मां साहब खिलावन का पैसा मिले और खावन की बीमारी मिले, ये सच है बता रहा हूं। इंदौर में पहला चौमासा था, प्रवर्तक सिंह जी की सेवा में गोत्री में ही जाता था, और आपको पता है कि इंदौर का नमकीन कितना फेमस है, और मुझे नमकीन उस समय बहुत भाता था। मैं सारे नमकीन के जिनके जिनके नमकीन की दुकानें थी उनके घर पर गुजरी जाता था, मैं समझदार नमकीन बेराते ही नहीं थे। अब बोल भी कैसे सकता हूं, कह भी नहीं सकता हूं कोई भाई दे। एक 15-20 दिन एक महीना बीतने के बाद एक बार एक थोड़ा सा नजीक आया, मैंने उसको पूछा अरे भैया तुम्हारी घर में भट्टी जलती है नमकीन की, हम गोत्री आते हैं, तुम नमकीन बेराते क्यों नहीं? बोले मां साहब हम भी नहीं खाते, तुमको क्यों बेरा है? बाप रे। बोले हमको खाना होता तो घर में बनाते हैं। अब अगली बात ओपन नहीं करता हूं मैं, ये सगड़ा इंदौर नमकीन वाला कठे मने है, पर अगली बात जो उसने कही, तब से मैंने बाजार की नमकीन खानी बंद कर दी। तुकाराम मुंडे को जाकर पूछ सकते हो, और मुझे लगता है इस सभा में चतुर्मास में मैं समर्पण चतुर्मास समिति को आग्रह करूंगा कि एक बार तुकाराम मुंडे को यहां बुला करके उसका सम्मान करिए, एक ऐसा बंदा कि जिसने सारे पाखंड की पोल खोल दी, और उसका सम्मान होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? होना चाहिए ना। अरे मुझे धन्यवाद दो, मैंने किसी के सम्मान देने की बात कही है, नहीं तो प्रवीण ऋषि और किरो सम्मान है ना। तो बस अपना टाइम हो गया है, मैं मंगल पाठ सुना रहा हूं, जिनको बैठना है वो बैठ सकते हैं और बैठे बैठे ही मंगल पाठ सुन सकते हैं, जिनको जाना है वो मंगल पाठ पूरा होने के बाद आराम से उठ करके जा सकते हैं, शांति से जा सकते हैं। केवल इतना याद रखना।
1: श्रोते मित्र हो, परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज यांचं अहिल्यानगर इथं चातुर्मासानिमित्त समर्पण चातुर्मास प्रवचन मालिकेतल्या प्रवचनाचा संपादित अंश आताच आपण ऐकलात।
2: घराची ओढाताण आणि कामाची गडबड तर रोजचीच आहे, पण या सगळ्यात तुमच्या आवडी निवडी कुठे हरवल्यात का? आता स्वतःला द्या फक्त 2 तास। रेडिओ नगर 90.4 FM घेऊन येत आहे खास तुमच्यासाठी गोष्टी तुमच्या आमच्या। यात महिलांसाठी आरोग्य विषयक सल्ला, घरबसल्या आर्थिक नियोजन, फॅशन आणि ब्युटी टिप्स, शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्या कर्तृत्ववान महिलांच्या गोष्टी, तसंच अनेक सोप्या आणि स्वादिष्ट रेसिपीज, मुलांचं शिक्षण, मोबाईल आणि बदलती जीवनशैली यावर मनमोकळी चर्चा करूया आपल्या आर जे ऋतू सोबत। चला तर मग, तुमची कामं आवरा, रेडिओचा आवाज वाढवा आणि सहभागी व्हा या प्रवासात, कारण या गोष्टी आहेत तुमच्या आमच्या। सोमवार ते शनिवार सकाळी 11 ते 1 या कालावधीत फक्त आपल्या रेडिओ नगर 90.4 FM वर।

स्नेहालय संचलित स्नेहाधार प्रकल्प, विधवा, परित्यक्ता, बालमाता, कौटुंबिक अत्याचारग्रस्त महिला या सर्व महिलांसाठी काम करणारा प्रकल्प स्नेहालय स्नेहाधार प्रकल्प।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।